त्यका को पावा के पचे चेता आम छेवे पिछोते पमयं यकय हे क्यों नम्या तालावा ये हे ये हे या हे या हे या को ने नम नवत क्या ओवे ओवा कै कौन मो कै कै चाओ।